0: देख देख दया देखा एक दिगट
1: ना सुना से इवत पला गया सुदुनु बटम पे विला
2: मैंने अरे वाह सिंधु सी उतरा
3: मुगी अक्सा पाई दवाले
4: एकमा आर्टिस्ट की सिंधु डबल डबल